0: मैं सारे काम काज करूँ, तेरे गुस्से लेके ईगो का मसाज करूँ, तेरा रूम का जो खोया गलती है तेरी और उठाने जाके FIR में लॉज करूँ। जानती है कि मैं तुझे पे चला हूँ, ये जानती है तेरी आसपास को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता रहूँ मैं तेरा झूम का।
1: अरे बहन के सुना बेबर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झूम का गिरा रे।
2: झूम का

करे ब्लो, बाकी करे शाइन, तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है वॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

कोई भी शंका अपने प्यार का बजा दो लंका, फिर मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका, छोड़ छाड़ के दुनियादारी तेरे बीच में पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं, मुझको